ज्ञानामृत प्रिय पिपास मुनीन्द्र बृंद संसेवनोत्सव समुत्सुक चित्र लीलौ नित्यावतृप्त्यमृत रूप धरौ प्रशान्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये नित्यात्मभाव निरताखिल दास वर्ग संप्रार्थनाभिमत दान गुणैक शीलौ नास्तिक्य रूप विषवृक्ष विनाशकौ द्वौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये दिव्यौ मृकण्डु मुनिपुत्र सुदर्शितौ तौ श्रीशौनकादि मुनिबृन्द सदा सुसेव्यौ सर्वोत्तमौ सकल दैवत वन्दितौ हि कोटप्पदेव चरणौ।

0: ईशा नंबर वेज का था
1: रास्को फोर
0: फोर
2: हाँ फोर
1: इंतकन नहीं
0: ये
1: इंतकन नून अच्छी ले दो।